ਯਾਰਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆ ਸੋਏ ਕੰਧ ਗਿਛਰਦਾ ਥਾਏ ਸੋਏ ਨ ਚੜਸਾ ਚਟਾਏ ਕਾ ਕੁਜੈ ਏਕ ਬ੍ਰੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਹੀ ਚਿਤ ਹਾਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਸਹਿਜ ਬਾਣ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਿਸ ਜਨ ਗੁਰਬਾਣ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੈਵਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਮ ਪਿੰਡ ਦੀਨ ਮੁਗਧ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰ ਹੋ ਜੋਤ ਕੀਨ ਸਭ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਨਿਕ ਨਿਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਂ ਪਾਵ ਤੁਮ ਦੇ ਸਗਲ ਥੋਕ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਤੀ ਉਧਾਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਦ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਬਿਗਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਾ ਕਾਰਨ ਏ ਦੁਲਭ ਦੇ ਸੋ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਹ ਸਾ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਨਾਮ ਸਦਾ ਹਿਦੈ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਸਭ ਤੇਰੋ ਖੇਲ ਤੁਝ ਮਾਇ ਸਮਾਏ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੇ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਬਸੰਤ ਮਹਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਦਾਇ ਸਹਿ ਦੇਖ ਆਉ ਜਿਵੇਂ ਮਾਏ ਜਾਂ ਕਛਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਇਆ ਮਿਲਾ ਬੋਧ ਸਹਿ ਮੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਤੇਰੋ ਧਨ ਦਹਾਓ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਖ ਨਾ ਲਹਿ ਭੇਵ ਜਾ ਕੇ ਗਤ ਮਿਤ ਕਈ ਨਾ ਜਾਏ ਘਟ ਘਟ ਘਟ ਲਏ ਅਸਮਾਏ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੈ ਭਗਤ ਹਉ ਨਾਹੀ ਖੈ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਹਉ ਨਾਹੀ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਹੋ ਸਦਾ ਜਾਏ ਕੌਣ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਚੇ ਖਜਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਦਾਨ ਨਿਆਮ ਰੱਬ ਸੰਤ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿਲ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ ਹਰੇ ਬੂਟ ਸਤਸੰਗਤ ਤਿਉਂ ਛੁਮੈ ਛੂਟ ਜਸੀ ਦਸੇ ਧੀਰ ਮੀਰ ਦਸੇ ਉਧਾਰਨ ਗੁਰੇ ਪੀਰ ਤੁਮ ਦਾਦੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਸਨਮ ਸੰਕਾਰ ਨਹਾਓ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਭ ਸਤ ਸੰਗ ਤੇ ਸੰਜਾਨ ਲਾਗ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਭੈ ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਰਾਧੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਨੇਤਰ ਸੰਤੋਖ ਦਰਤ ਵੇਖ ਰਤਨਾ ਗਾਏ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਅਗਾਨਾ ਹਰ ਦੱਸੇ ਸੁਵਾਦ ਸੇਵਕ ਲਾਗੋ ਚਰਨ ਸੇਵ ਅਦ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਦੇਵ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਆਓ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਬਸੰਤ ਮਹਾਲਾ ਪੈਵਾ ਤੁਮ ਬੜਦਾ ਰਹੇ ਦੇ ਦਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹੇ ਦੀਨੇ ਸਗਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਨ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਣੋ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਰਹਾਉ ਜਾਪਣਾ ਤਾਪਣਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤ ਜਾਪ ਨਾ ਤਾਪ ਨਾ ਕਰਮ ਕੀਤ ਆਵੈ ਨਾਹੀ ਕਛੂ ਰੀਤ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੋ ਆਸੇਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀਤਰੋ ਟੇਕ ਸਭ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਦੁੰਬਰ ਬੀਨ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚਲੇ ਹਮੀਨ ਅਗਮ ਅਗਮ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚ ਹਾਮ ਤੋਰੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਮੂਚ ਜਿੰਤੂ ਧਿਆਨ ਸੇ ਗਣੇ ਜਿੰਤੂ ਪੈ ਸੇ ਧਨੇ ਜਿੰਤੂ ਸੇਵੇ ਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਰਨ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਬਸੰਤ ਮਹਾਲਾ ਪੈਵਾਂ ਤਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵ ਜਿਨ ਤੂੰ ਕੀਆ ਤਿਸੇ ਰਾਦ ਜਿਨ ਜੀਉ ਨੀ ਆ ਤਿਸ ਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸਕਾ ਚਾਕਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਾਨ ਲਾਗੈ ਤਿਸ ਕੀ ਕਦ ਪੁਰਦਾਰੀ ਫਿਰ ਦੂਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਏਵਡ ਭਾਗ ਹੋਏ ਨਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋ ਪਾਏ ਇਹ ਪਦ ਨਿਨ ਬਾਣੀ ਰਹਾਓ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾ ਮਾਨਸ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਵਰ ਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਜੇ ਲੋੜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੇ ਬਤਾਈ ਉਹਾਂ ਜਪੀਏ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਗਲ ਤਤ ਮੈਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਏਕ ਧਿਆਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਤੁਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਣ ਬਸੰਤ ਮਹਾਲਾ ਪੈਵਾਂ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਪਿਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਸੋਏ ਜਿਸ ਅਰਾਧੇ ਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਗਏ ਜਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਿਆਗੋ ਮਨ ਗੇ ਸਗਲ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਜਿਸ ਗੇ ਧਾਰੇ ਧਰਨ ਆਕਾਸ ਘੱਟ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਬਿਰਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਅੰਤਕਾਲ ਫਿਰ ਨਾ ਰੋਏ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੈ ਉਪਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਲਾਗੋ ਸੇਵ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਸ ਕੀਆ ਦਾਨ ਤਿਸ ਕਹੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਧਾਨ ਨਿਸ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇ ਬਸੰਤ ਮਹਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰ ਲਾਗੀ ਵਿਆਸ ਗੁਰਦਿਆਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਆਸ ਗਿਲਵੇਂ ਕੱਢ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੰਤ ਬਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਰਧਾਰੇ ਤਦਾ ਹਰ ਜਸ ਨਾ ਰਹਾਓ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਮੋਇਆ ਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਜਨ ਤੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਨਿਸਤਾਰ ਭਾਵ ਖੰਡਨ ਦੁੱਖ ਨਾਥ ਦੇਵ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਧਰਨੇ ਕਾਸ ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਮਾਹੇ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਸਭ ਜੰਤ ਗਾਏ ਅੰਤਰ ਜਮੀ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਦੇਹ ਦਾਨ ਜਪ ਜਿਵੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਮਹਾਲਾ ਪੈਵਾ ਰਾਮ ਰੰਗ ਸਭ ਗਏ ਪਾਪ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪ
गोविंद जवत सब मिटे अंधेर हर सिमरत कछ नाय फिर बसंत हमारे राम रंग संत जना सिंध दा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तानु देश हर भगतीन उदयान तान गुर प्रसाद कट घट बचान हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप करत तू थदा संग निकट पेख प्रभ करन हरि दूत प्रभ कार्य सार जन कमल सिंह लागू ध्यान कर कृपा प्रभ कीनो दान तेरिया संत जना की बाच तूर जप नानक स्वामी सद हजूर बदंत महला पहिमा सच परमेश्वर नित नवा गुरु कृपा ते नित जवा ब्रभ रख वाले माहे बाप जाके सिमरन नाहीं संताप खसम त्याई एक मन एक भाए गुर पूरे के सदा सरनाए साजे साहेब रखे अखंड लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूर सब ब्राह्मण थके बिन गुदा जे नाहीं जाए दुख दिद संतर रह ताए गिरते उन्ना का मिट नाहे ओहे अपना बिज आप खाहे जन कर खुआला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोय प्रभु दास रखे हार जितन आप अखंड पूर्ण जाक्यो प्रतपा प्रताप गुण गोबिंद ने तरथन गाय नानक जिवे हर चरण त्याब संत महला पैया गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी माया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जिवे नानक राम नाम सार उत सुहावे नित हार चित आवै बैन सतगुण दिसे बिन लाती साखत फिर फिरने आवै जावे रहाओ सेतन मंद जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नस पै बिनसे निरपै पदम पाया गुर मेरे नानक कदम ते आया सतसंग प्रभ क्यों निवास हर जप जप होय पूर्णयास जल थल महल रब रहया गुर मेरे नानक हर हर कयाष्ट छेद नहु निद एह कर्म प्राप्त जिस नाम देह प्रभ जप जप जीवे तेरे दास गुर मेरे नानक कमल प्रगास बसंत महाला पहिमा गार पल एक दुख एक अंका सतग प्रसाद सगल इच्छा जप मुनिया प्रभ मेरे जरी बछुनिया तुम रवो गोविंदे रमन जोग नित रव्या सो सहज भोग रहाओ कर कृपा नर निहालिया अपना दास आप संभालिया से सुहावे रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण नाम विचारे न प्रभ नानक चरण पुजारिया बसंत महला पहिमा कल बिख बिनसे गाये गुणान दिन उपजी सहित नाम मोले ओ हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाओ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़न लाए उधारे दीन दयाल ए मन हुआ सार धूर नित देखे स्वामी हजूर गाम करोर दिसना गई नानक प्रभ कृपा पय बसंत महला पहिमा रोग मिटाए प्रभु आप बालक रखे अपने कर थाप जान सहज करे तद बसंत गुरपुरे के चरण सरणी आए कल्याण रूप जप हार हार मंत्र रहाओ सुख संताप कटे प्रभ आप गुर अपने गौ नित नित जाप जो जन तेरा जपै नाओ सब फल पाए निचल गुण गौ नानक भगतां भली रीत सुखदाता जप दे नीत नीत बसंत महला पहिमा हुक्म कर कीने निहाल अपने सेवक भया दयाल गुरपुरे सब पूरा किया अमृत नाम रिद मैं दिया रहाओ कर्म धर्म मेरा कुछ न बिचार बां पकड़ भोजन निसार प्रभ काट मैल निर्मल करे गोर पूरे की सरनी पर आप करे आप करने हार है पर कृपा नानक उधारे बसंत महला पहिमा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल भागे तुम मिलो प्रभ संभागे हर ठेद मन मेरे रहाओ सगन बास कोले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आये पर फूलता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोव बोव अन रूत नाही नाही मत भरम बोलो बोलो गुर मिले हर पाए जिसन मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुरन कहे नानक हार हरे हर हरे बसंत महला पहिमा कर दूजा हिंडोले को अंकार सतगुर प्रसाद होए कतरे मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो ले बुलाए हर नामे के हुव जोड़े गुरमुख वैसु सभा विचाए इन बिद पाथा ढालो बीर गुरमुख नाम जपो दिन राति अंत काल नह लागे बीर रहाओ कर्म धर्म तुम जपड़ साजो सात क्रोध सारे काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी ओटे स्नान करो प्रभाते सोए हर आराधे मिकड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहर चेती कर जाते हर आपे खेले आपे देखे हर आपे रचना सजाया जा नानक गुरमुख जो नर खेलै सो जिन बाजी कर आया बसंत महला पहिमा हिंडोल तेरे कुदरत तू है जाने और दूजा जाने जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने तेरे भगतां को बलिहारा थान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे अपारा रहो तेरी सेवा तुते होवै वन दूजा करता भल तेरा सोई तुद पावै जिसनु तू रंग दत्ता तू वण दत्ता तू बणदा ना और नहीं को दूजा तू समरथ स्वामी मेरा क्या जाना तेरी पुना तेरा मैं लंगोचन मेरे प्यारे बिकम तेरा है भाणा गौ नानक टह पया दुबारे रख लिव मुख दया जाना बसंत डोल महला पहिमा
मूल ना बुझे आप ना सोझे परम व्यापी अंग मणि पिता पर ब्रह्म प्रभु धनि मोहन सारु निर्गुण रहोत पर लो प्रभु ते होवे बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग रते कल मैं सुखी से गणी अवर पाव न कोई सुजे नानक त्रिय गोद बचने को अंकार सतगुरु प्रसाद डग बसंत हिंडोल महला नवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा पितर जो राम बसता है साजो ताय पछानो रहाओ ए जग है संबर सुपने की देखा है डानो संग तुहाडे कछु न चल ताहे का लपटानो तत निंदा दो पर हर हर हृदय रानो जस नानक साहब ही मैं पूरन एक पुरख भगवान बसंत माला नाम वापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल जहाँ ते गयो न जाय रहा जोगे जंग मार सन्यासी सब ही पर डारी ए फास जेह जेह हर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाय दिजे नाम रहे गुण गए बसंत महला नवा माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धावन ते छुट्टियो कर बैठो बिश्राम रहाओ माया ममता तन ते भागी उपजियो निर्मल ज्ञान लोभ मोह ए बदर ना साके गई भगत भगवान जन्म जन्म का सुख संसार चुका रतन नाम जब पाया दृष्टना सगल बिना सी मन ते नहीं दिसो कमाए समाया जहाँ कहो दयाल कृपा निध सो गो बिंद गुण गावे कहो नानक बिंद को संपै कहो गुरमुख बावै बसंत महला नौवा मन काम विसारे राम नाम तान बिनसे जम सिंह परे काम दहावे जग तुए कब हार तै साजा मानिया कहे विचार धन दर संपद करे कर संग न चले समझ ले एक भगत नारायण सोए संग कौ नानक भज तह एक रंग बसंत महला नौवा कहाँ भुल्यो रे झूठे लोग लाग कछ बिगड़ो नारायण अजो जाग रहाओ जा साम सुपने कह ए जग जान बिन सह सिन मैं सची मान संग ते रहे हर बस नीत निसबसर भज ताए मीत बार अंत की होए सहाय गौ नानक गुण ता कह गए बसंत महला पहला बरिया घर पहला दो तुकियां को अंकार सतगुरु प्रसाद जग कहुआ नाम नई चीत नाम विसार ग्रह देख भीत मनमा डोले देत नीत जग सिंह तुटी झूठ प्रीत काम क्रोध वेख बजर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहो कार बालू का घूमन केर बरखस बाणे बुध बधाएर मातर बूंद ते दर चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब पाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर नाम रथो जाहो तुज होर नाम तुराय चले सचोर पत कोई बिक अंचल पाए साच नाम रथो पात स्यो कर जाए जो किस गिनस प्रभु जाए पै मन निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मिठे रस रोग खिले बिसे तेतो रसोग प्रभ शरणागत कीन सोग कपट पैरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप विकार सबन सबन दो बार नाम बिना छू ना घर बार गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दो सवार प्रियो सेव प्रभ प्रेम आधार गुर शब्द बिकत आस निवार मोहन मोह लिहिया मन मोह गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठांडे चाहे प्रभ द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मान भुल्यो परमस आए जाए अत लुभ लभानो बिखंब माए नह अस्थिर दिसे एक पाए ज्यो मीण कुंडलियां घंट पाए मन भुलो समझ ससाज नाहे गुर शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन पूलो परमस पवन दार बिल मिठे चाहे भाव बेकार मैकल ज्यों फासस काम हार कड़ बंधन बांध्यो शीस मार मन मुड़ो दादर भगतहीन दार भ्रष्ट सदापी नाम बीन ता कहे जात ना पाति नाम दिलीन सब दुख तलखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाण राख बिन हार रस रते मन पत ना साख तू आपे सुताप राख धार धारण देखे जाने आप भुलाए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माया गुण छोड़ो हो गुण कमाए गुर शब्द राता सच समाय सत गुर मिले अत मत उत्तम होए मन निर्मल हमें कड़े दो तदा मुक्त बंध न सके कोई तदा नाम खाने अवर न कोय मन हार कह भाने आवे जाए सब मैं को कैश कह न जाए सब हुक्मो वरदे हुक्म समाए दुख सुख सब तिर जाए तू भूल न भूलो कदे नाहे गुर शब्द सुनाए मत आगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माए मन नानक मानिया सच सलाए बसंत महला पहला
दर्शन के प्यास जिस नार होए एकत राचे पर हर दुए दूर दर्द मत अमृत कोए गुरमुख गुंजे सुनाए तेरे दर्शन कहो खेती मिल लाए बिरला को जिनस गुरशब्द मिलाए रहाओ वेद बखान करे गगैया ओ बेअंत अंत न किन लहिया एको करता जिन जग गया बाज कला तारक ग्रंथरिया एको ज्ञान ध्यान तुन बाणी एक निरलम कत कहानी एको शब्द सच्चा निशान पूरे गुर ते जाने जान एको धर्म दृढ़ सच कोई गुरमत पूरा जुग जुग सोई अनहद रत एक लिवतार ओ गुरमुख भवे लख अबार एको तख्त एको वर्षा हो सभी ताई बिगे प्रवाह तिस्का किया त्रिपवन साध व गम गोचर एकंकार एक मूर्त सचा नाव तिन भीड़ निबड़ सा चन सच करनी पत प्रवान सारे नंगे भावे मान एक भगत एको है पाओ बिन पह भगति अवंजा गुरु ते समझ रहे मेहमान हर रस रता जन प्रवान ए तोर देखो सहजे राबो तुझ बिन ठाकुर किसे ना पाओ नानक हमें शब्द दिलाया सतगुर सदन दर्श दिखाया बसंत महला पहला चंचल चेत न पावे पारा आवर जात ना लागे बारा दू कण मरिय कर तारा बिन प्रीतम को करे ना सारा सब उत्तम किस आखो हिना हर भगति सच नाम लेना रहाओ औकद कर था कि वो तेरे क्यों दुख जो कह बिन गुर मेरे बिन हार भगति दुख नेरे दुख सुख दते ठाकुर मेरे रोग बदो क्यों बंधु धीरा रोग बुझे सो काटे पीरा मैं अवगुण मन मैं शरीरा ढूंढत गुर गुर मेरे मेरा गुर कंजन दारू हर नाओ ज्यो तो राके तिवे नहाओ जग रोगी कह देख दिखाओ हर निर्मायल निर्मल नाओ घर मैं घर जो दिंग दिखावे गुर मैली सो मैल बुलावे मन मैं मनवा दित मैं जीता ऐसे हर के लोग दिता हरक सुख तेरे निलासा अमृत जाक हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहज मनो जीव दही जीव अपनो घर रखो गुर पावे है तुमरो होए तो तुझे समावे भोगी कौ दुख रोग में आपे काट काट रहे रब रहे ब्रह्म जापे सुख दुख हित गुर शब्द दिता नानक राम रवे हित जीता बसंत महला पहले दुखिया मत भस्म अंदले गर्भ जाए न बिद नागे जोग नाहे मूढ़े काहे बिसारियो तै राम नाम अंत काल तेरे आवे काम रहाओ गुर बूज दुम करो विचार या देखियो तै सारंग पान क्या हूँ आका जहाँ कछु नाहे जात पात सब तेरे नाहे गाहे माल दर्भ दे गर्भ जाहे चलती बार तेरो कछु नाहे बंच मार निद रखो ताहे जोग जुगत की ए पाए हमें पैकड़ तेरे मन माहे हार ना देते मुड़े मोत जाए मत हार विसरे जम वस पाए अंधकाल मुड़े चोट खाए गौर शब्द विचारे आप जाए सा जोग मन वसै आए जिन जीव पिंड तार जेते नाहे बड़ी मसानी मुड़े जोग नाहे गुण नानक बोले भली बाण तुम हो सुजाख लेहो पछाण बसंत महला पहला दुखदा दुरमत अंदली खार गुरमुख भरमे मज गुबार मन अंदला अंदली बदला गया गुर करनी बिन भरम ना भाग रहा मनमुख अंदले गुरमत ना पाई बजो पाए महा ना जाय लख चला सी जंत पाए मेरे ठाकुर बाण है सिर जसमाय जगली भूले नाही शब्द चार सो समझ गुर करतार गुर के चाकर ठाकुर भाने बख्श लीने बख्श लिए नाही जम गाने जिन कह हृदय को पाया पे मेले परम जुगाया बेमदार बेअंत बारा सच भतीजे करने हर नानक भूले गुर समझाए एक दिखावे साच दिखावे बसंत महला बेला आपे भवरा फूल बेल आपे संगत अमीर मेल ऐसी पवरा बास ले तरवर फूले बन हरे रहाओ आपे कबला कंधे आप आपे डावे छोड़ दो आप आपे बछरू गऊ खीर आपे मंदिर धाम सरीर आपे करने करण हार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देखे कटन हार जोड़ जी असंख दे धार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परमहीर तू आपे करता करण जोग ने केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम सुवाद बेन हर गुर प्रीतम जन्म बाद बसंत ढोल महला पहला कर दूजे को अंकार सतगुर प्रसाद नौ सर चौदह तीन चार कर मोहलत चार बहाली चारे दिवे चौ हाथ दिए का एक वारी मेहरबान मरसूदन माधु ऐसी सख्त तुम्हारी रहाओ कार कर लचकत भावक तेरा धर्म कर जगदारी धरती तेग मिले एक बेरा भाग तेरा भंडारी ना सबूर होवे फिर मंगे ना हरद करे कुवारी लाभ तेरा बंदी खाना उगना खैर पैर लोहारी
ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੈ ਨਿਤ ਮੁਦਗਰ ਪਾਪ ਕਰੇ ਕੋਟ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇ ਮੰਦ ਐਸੀ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਉ ਵੱਲੋ ਗਈਏ ਸਿੱਖ ਆਈ ਵਾਰੀ ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤ ਚਾਲੀ ਕੁਹਜਾ ਵਾਂਗ ਨੇ ਵਾਜ ਮੁਸੱਲਾ ਨੀਲ ਰੁਬਨ ਵਾਜੀ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸੁਪਣਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ਗੇ ਤੂੰ ਮੀਰ ਮਹੀ ਪਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦ ਕੌਣ ਹਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਣ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਗੇ ਕਰ ਕਰ ਸਿਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਣ ਦਾਨ ਕੇ ਚਲਾ ਮਿਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੱਡਿਆਈ ਮੇਕਾ ਘੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਬਸੰਤ ਖੰਡੋਲ ਮੁਘਾਰ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ ਕਿਨ ਪਲ ਤੇਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਅਣਕ ਭਾਵ ਨਿਤਨ ਕਰ ਥਾਕੇ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਰਮਾਈ ਮੇਰੇ ਡਾਕਨ ਬਾਲਕ ਕਿਰਤ ਕਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਈਆ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਾਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਜਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਕ ਚੁਆਇਆ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਹੁਆ ਰਸਿਆ ਮੈਂ ਨਿਰਕਤ ਨਿਰਕਤ ਸਰੀਰ ਸਭ ਖੋਜਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਲ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਹਰ ਖੋਜ ਮੋਏ ਸਭ ਸਖਤ

आउ शिव साध संत चरणी रह पाछ धूर पवित्र करी रह अठसठ मज्जन मैल कटीर सासत आप मुख नहीं मोर ये संग न चाला इन लाख करूर प्रभु जी गुना मंत पुकुरूर आई मनसा मान एक निरंके निरंके रह सकल त्यागू पाऊ दूजी रह कबन कहाँ हौ गुण प्री तीर वरण साको एक लुटेर दर्शन प्यास बहुत मन मीर है मन नानक देव जगत गुर की रह कारण मल पंजवा ऐसी कौन विधि दर्शन परसन रह वास पे आशु सफल मूरत हो मोग ही यो तरसना दीन ली नु प्यास मीन संतना हर संतना हर संतना की रे नु ही वार पहु दीन प्रापय कृपेन मान मोह त्याग छोड़ियो तो नानको हर जीव भेट ना कन्न मल पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट का हस्त पूर्ण साभ संग रहो बर्तनी मुती सहत गंगा जल हे वत भूखा रहू नंगा पूजा चारु करत मेलंगा चक्कर करम तलक खटंगा दर्शन पीटी बिन सत्संगा हठ निग्रह यातु रह तो बिटंगा हो रोग व्यापय चुकन भंगा कांगु त्रिशन जरंगा सुमुक्त नानक सतगुरु चंगा करण भला पंजवा कर सतमे कुंगा सतगुरु प्रसाद तक बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखाय नय हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार आओ जैसी करी प्रभ मोशो मोशो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बाल भले बाल गाई पहले पसंद पाए ते आए ते आई प्रीत लाए प्रभु थान तेरु के रुजत संतन जंतन कर विचार अन्न को दास गीत करह तुहारी सोई मिलियो जो भाव तो जन नानक ठाकुर रहे उस माएक तू ही तू ही तू ही कानड़ा महला पंजवा कार अठवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद त्यागी गुमान मान पीकता दया लाल हां हां मान चरण रीन राहु हर संत मंत गोपाल ज्ञान त्यान हृदय गोविंद गाय चरण कमल प्रीत लाई दीन दयाल मोहना कृपाल दया मय तारू नानक मंग नाम दारू ताज मोह भारम सगल अभिमान करण मल पंज प्रभ कहन मलन दहन लहन गुर मिले आन नहीं पाओ रहाउ तटन खटन जटन होम नाई डंड तर सुआउ जतन भांतन तपन ब्राह्मण अन कऊ कथ कथते नहीं था पाई ठाऊ सो सगर शोधन नाम सुख नानकाउ भजना करण मल पंजम करनाउ एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पद पाप भगत वचल हरण तारन तरन रहाउ नैन तिपते दर्श पेख जस तोख सुन तऊ करन प्राणनाथ ना दाती दीन गोबिंद शरण आस पूर्ण दुख विनाशन गई ओट नानक हर चरण करण मल पंजम चारण शरण दयाल ठाकुर आ ना ही जाय पतत पावन पर स्वामी उदर ते हर त्याई राव संसार कर विकार सागर पतत मोह मान अंध बिकल माया सांग तंद कर गहे प्रभ आप कड राखो लियो गोविंद राय नाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप विनाश मन दर्शन की प्यास प्रभ पूरन गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाये करण मल पंजवा बार बार अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात राहु कनक मंदर पाठ से सखी मोहि नाही अनस्यों तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नानक नाम नानक आत रुख भोजन भूप सह नू सखी प्रेर सांग सुख बिहत करण माला पंजवा अंग तो रो मुख जो रो गुर गुर कर तु मन लो रो प्री प्रीत प्यारो मोरो रहाउ ग्रे से सुहावी आंगन सैना चैना त्योरो री तोरो पांच दुदन सो संग तोरो आय न जाय बसी न जासन कमल बिकसूर छुटकी हो मैं सूर गायो गायो प्रभु नानक गुण के हीरो करण माला पंजवा करण माता थे जाप मनो मनाम हर जापू जो शांत वीर कहत पंथ काखरू मोह मगन अहंता प्राउ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उधर जिस दारू आप बिन सजाए मोह परम नानक संत प्रताप करण माला पंजवा करदा समय को अंकर सतगुरु प्रसाद ऐसो दान देहु जी संतो जातियो बलिहार मान मोहि पांच दो उर्ज निकट बसु ताकि शरण साधु अदूत सांग निवार राहु कूट जन्म जोन भ्राम्यो हार दो परयो द्वार कृपाउ गोविंद पाई मिलियो नाम आधार दुलभ जन्म सकल नानक पवतार पार कानड़ा माला पंजवा कर ग्यार मैं को अंग सतगुरु प्रसाद सहज सुभाय अपने आए कछु ना जानो कुछ दिखाए प्रम लियो सुख बाले भोले राहु संजोग मिलाए साथ संगाए कतु ना जाय कर है बसाए गुण दान प्रगट हो हे चो लय चरण लो भायान तो जाय थान थना शर भूषम रस रस नान गुण हूं बोलन करण माला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दराई परम रूप गम गोचर रहियो सर्व समय रहाउ कहन पावनु नाही पायु पायु अनत अनक ओकत चतराय जतन जतन अनको पावरे तौ मिलियो जो कृपाई प्रभु दया कृपार कृपण दऊ जन नाम संतुरे नाय करण मल पंजवा
ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਰ ਚਿਤਵੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਸਾਸਨ ਨਿਸ ਪੂਰਨ ਆਉ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਨਾਪਨ ਤੂਟਤ ਨਾਹੀ ਜੋਰ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਾਨ ਸਰਬਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦੇ ਸੁਖ ਮੋਰੀ ਤੂਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਨਿਰਖਤ ਰਿਦ ਖੋਰ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਤਰਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਿਉ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं

मिलविला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लास्ट वीक भाई साहब आपां नूं कुछ कह के गए से भी थोड़ा लागे लागे जे होके बैठा करो, पर आपां अपना आदतां तों मजबूर आ है ना, क्योंकि आई थिंक वी फील लाइक भी ज्यादा खिलर के बैठना ना। कोरोना जा चुका है, 2 मीटर वाला 1 मीटर वाला वो हुण है नहीं कुछ भी, आपां लागे लागे होके बैठ सकते हैं। ते ना इत्थे कोई नैगेटिव एनर्जी छड़दा जिहदे कोल बैठे, यार मैनूं इहदे कोल बहुत नैगेटिव वे फील हो रही है, इदां दा भी कोई गल नहीं है भी। सो आ ठीक लगता है, इदां सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। भाई बलजीत सिंह ने एक गल कही ना बच्चे वाली, ते जिहड़ी बच्चे लई पैसे इकट्ठे हुए मिलियन पाउंड, मैं इहदे विच कोई उहदा जिक्र नहीं कीता स्लाइड्स दे विच, हुणे बैठे मेरे दिमाग च आया सी। कैन यू इमेजिन जे बच्चा इंडिया च पैदा होया हुंदा फिर की होना सी, जसलीन कौर की होना सी पुत, जे बच्चा इंडिया च कुछ नहीं होना सी, कुछ भी नहीं सी होना। तो बच्चे का की कसूर हो इंग्लैंड च पैदा होवे जां इंडिया च होवे, सच्चे पातशाह ना सैल पत्थर में जानतू पाए ताका रिजक आगे कर तरिया। काहे रे मन चित वै उदम, तू ओवर वरिंग क्यों कर रहा है मेरे मना, जिस वाहिगुरु जी ने जिदा ला जिथे करवाना जिदा करवाना आ सच्चे पातशाह ने उथे भेज देना। मैं गुरप्रीत सिंह दे करके ना मैं एक गल शेयर की सी, कैनेडा दे विच अमेरिका दे विच एक अज तो 10-12 साल पहला एक न्यूज़ आई सी, वो न्यूज़ सी बेबी सेव बेबी, प्रभाव है बिन सांस ते रख है, विदाउट ब्रीदिंग पावर किदां कोई रख सकता है। 2 बेबी सेम डे पैदा हुए, सेम हॉस्पिटल च पैदा हुए, जदों बच्चा मदर दे वॉम च होंदा, मैनूं नहीं सी पता उन्होंने जदों सानूं ट्रेनिंग कराया रहे सी उत्थे उन्होंने दस्या कि तुहाडा काम होप देना आ प्रिजनर्स नाल, जदों गल करदे आ उन्होंने फेक गलत होप नहीं देनी कि वह लाड़ी पैण तू तो मैनूं इदां कहा सी, पर उन्होंने एक वधिया उम्मीद वाली जिंदगी किदां देनी आ। ते उह बच्चे दे लंग्स पैक हुंदे आ जदों माँ दे वॉम च हुंदा, उहदे अंदर पानी नहीं जा सकदा, जो बच्चा पहली बारी आके इतने सह लेंदा ना, जो ना लेंदे तो उन्हें पंप कर दिया कि लंग्स खुल जाए, वो लंग्स इन्नी क ज्यादा पैक सके वो नहीं खुल सके, तो उन्होंने वो पाइप वगैरह ला के वह हार्ट तक चालू रखिया। तो पेरेंट्स ने कह दिता कि यह बच्चा जोड़ा थोड़ा आ ये बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता, भी असी इन्हू 1-2 दिन रख के बद तो बद देख सकते हैं, उदू बाद सू पाइप लाने पैने, सो अल्टीमेटली ही विल बी डाई। जिहड़ा दूसरा बच्चा सीगा उहदे हार्ट दे विच शेक सी, उहदा हार्ट सही नहीं काम कर रहा सी, ते उह कहिंदे भी ये लोंग टाइम डिजीज़ आ, भी पेसमेकर पा के ट्राई कर सकते हैं पर श्योर नहीं है बच्चा बचे जा ना बचे। तो पेरेंट्स दोनों ही बैठे आ, तो पेरेंट्स कहिंदे साडा बच्चा तो जाण वाला ही आ, क्यों ना असी हार्ट इहदा पवा दईए उहदे विच, तुसीं साडे बच्चे का हार्ट लै लो। तो डॉक्टर ने कहा यस दैट कैन बी पॉसिबल, उन्होंने हार्ट बच्चे का ट्रांसप्लांट कराने लिए वो सारा हॉस्पिटल दे विच हो गया ऑपरेशन लिए, तो जो डॉक्टर सीगा उहदे विच रब बोलिया। वो किदां बोलिया जी, उन्हें जो ना इंजैक्शन तैयार किया बच्चे नूं सवाउण दे लई, ते उन्हें सोचा भी ये बच्चे नूं ना आपां इंजैक्शन नहीं देना, छोटा जिहा तां है, 2 औखे जे साह लैणे ते इहनें मर जाणा, साह तैनूं आउणा ही नहीं है, कोई गल नहीं। उन्हें जदों दियां पाइपां लाइया ते 3rd कोशिश दे विच उहदे लंग्स खुल गए, तीजी कोशिश दे विच बच्चे ने जोर नाल इक अंदर नूं साह खिंचिया ते लंग्स खुल गए। ते उन्होंने कहा मिरेकल हो गया भी आ तां क्योंकि उस बच्चे नूं लाइफ देती, जे ना हुंदा उन्होंने टैस्ट नहीं सी करना। तो न्यूज़ ने बहुत कुछ छापिया उस टाइम दे उपर, तो सानू दसते सी कहिंदे सी उम्मीद दे उपर जिंदगी हैगी आ।
ਅਸੀਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਵਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਡੋਂਟ ਓਵਰ ਵਰਿੰਗ, ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ? ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਐਗਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੋਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ? ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਪਸ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ।

मेरे मन लैलाह कर जाए, मन नूं औंकड़ नहीं लगी, इस करके इनू वोकेटिव करना है, इनू संबोधन करना है, मेरे मन मेरा मना लैलाह कर जाए, अपना लाह लैके घर नूं जाना आपां। गुरमुख सदा नाम साला ही है, गुरमुख होके ना गुरु द्वारा नाम लैके वाहिगुरु जपना आ, तो इहदे नाल की होगी, अंदर लगी अग बुझ जाऊगी। जदों मैं गुरप्रीत नूं मिलन गया ना, तो मैनूं सब ना पता मोमेंट कि ज्यादा याद आई उहदे नूं मिल के, जिहड़ी आपां अमृत वेले इकट्ठा करते हैं। उन्हें शब्द कांठिया उन्हों ते अमृत वेले आके जो भाई साहब करते मैं जा, फिर उन्हें नाल शब्द पढ़ना इत्थे बैठ के कोई ना कोई शब्द। इनू कहिंदे आ गुरसिखां इको प्यार, गुरमित्तां पुत्तां भाइयां, गुर सतगुर बोलो सब, गुरु आख गुरु जीवाइयां। ऐदां जी हुंदा आ जीवन, जदों संगत च बैठ के नाम दा रास खट्टिया जावे, नाम दा ट्रेड कीता जावे, तो महाराज कहिंदे ऑटोमैटिकली प्यार पै जांदा। एदू वड्डा प्यार कोई नहीं जी, जिहड़ा संगत दे विच आ के आपां लाहा खट के जांदे आ ना जी, उहदे वर्गा प्यार कोई नहीं। पर्पज ऑफ लाइफ आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सरकमस्टांसिस, बट अल्टीमेटली गोल इज अ सचखंड। अच्छा, वह भाई साहब ने पिछली वे बहुत सोहनी गल कही, जेल चिट्ठियां सारे ने पढ़िया जी, बुक मैं हर वेरी आप जी नूं कहिंदा। भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी उहदे विच लिखदे आ कि मैं पिछले जन्म दे विच एक राजे दा पुत सी, याद आ बुक थोड़ा थोड़ा, राजे दा पुत सी, ते जिथे रहिंदे सी ना उथे गुफावां सीगियां वड्डियां वड्डियां, ते उहनां दे विच साधु भगती करदे हुंदे सी, ते उह जिहड़े साधु भगती करदे हुंदे सी अपना साह रोक लैंदे हुंदे सी, ते इक दिन कहिंदे मेरे नाल, ते मैं की करदा हुंदा सी, दुध लै लैणा, रोटियां लै जाणियां, ते उहनां नूं खवाउणियां, पुन्न दा काम करदे सी ना बहुत। हुण अगला जन्म भगत दा मिलिया उहनां नूं, पिछला जन्म देख के दस रहे भाई साहब। अच्छा, होया कि एक साधु मिलिया, वह साधु दे अंदर कुछ भी नहीं, सह भी नहीं चले, बिल्कुल पिंजर, ते उन्हां दी स्किन भी डिजोल्व होनी शुरू हुई सी, ते भाई साहब ने कहा अपने अहलकारा नूं, भाई भई इनू दुध पाओ, ते उहदियां दंद मीचे हुए सी, बिल्कुल अंदर कुछ नहीं सी जा रहा, उन्हां ने इट चक के उहदे दंद भन्न दिते, इत्थों मोहरियो, ते अंदर दुध पाया, ते जदों उहदे सवास चढ़ गए ना, जदों थले आए सवास, तो वह भाई साहब जी ने करस करना शुरू करता, उन्होंने बड़े कहिंदे शराब दिते सानू, तुहाडा हो जाए तुहाडा हो जाए, मैं राज भाग लेना सी इस दुनिया का, तुसी मैनू हुणे थले ला लिया। अच्छा, उहदे हाथ च तरशूल आया, तो उन्हें वह बंदे दे तरशूल मारिया, उह जदे तरशूल मारिया तो उहदी लत दे विच लगा। अच्छा, हुण भाई साहब जेल दे विच इह चीज़ देख रहे आ, ते जदों अगली राजमंदरी जेल दे विच जांदे आ, ते उत्थे जिहड़ा जेलर आया ना, उहदे लत दे उत्ते गोली लगी हुई सी, उह भाई साहब भाई कृपा सिंह उहनां नूं उहनां ने स्टोरी सुनाई सी, ते उह कहिंदे भाई साहब आ तां लगदा तुहाडा जेलर आ गया, उही वाला बंदा बदला लैण, कहिंदे लगदा इही आ। उह भाई साहब कहिंदे वी उहने उहदे लत दे विच तरशूल मारिया सी, ते इह उही साधु आ, ते हुण इहने दंद तोड़ना बस, होर अपना काम नहीं करना, ते मेरा भी करम कट्टिया जाऊगा, महाराज कृपा करन, ते उहनां ने फिर भाई साहब दा दंद तोड़ के फोर्स फीड कीती सी उत्थे। मैं उस चीज़ तों गल सिखण दी सी कि पिछले जन्म दे विच कीते हुए पुन इस जन्म च भगती मिलिया, ते पता नहीं आपां किहड़े किहड़े पुन करके आए हां कि इस जन्म च भगती दा जन्म मिलिया। पुन पुन वाले का तो हले पता नहीं किन्ने होने, पुन दान तो उपर आ नाम। महाराज गुरबाणी च गल कहिंदे आ वी नाम दा दान जिहड़ा आ इह तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का माणे, दा तिल जिन्नी जी गल आ, पता नहीं किन्ने जन्म दे पुन करने पैने तो भगती वाला जन्म मिलना, तो हुण आपां नूं भगती वाला मिल गया आ, ते इस करके गोबिंद मिलन की इह तेरी वरिया इज अवर अल्टीमेट गोल। एनी क्वेश्चन जी, कोई सवाल हो वे आप जी दा ते कर सकते, नहीं तो अपन आनंद साहब करके समाप्ति करिए। जिन्होंने अमृत की दात नहीं ली ना, जिन्होंने हले अमृत की दात नहीं मिली, देखो दुनिया ने कुछ नहीं देना,
महाराज कहंदे ना तन पुछी ना मता पकाया ऊट सदायो छूटर माटी देख नानक मिथुन महासा है। कहंदे ए शरीर दी ते सोल दी गल भी नहीं होनी आपस जदों वाहिगुरु जी ने वापस सदना। शरीर इत्थे खड़ा है ना जी, ते आत्मा नूं ए नहीं कहूगी कि तू हुण लम्मा पै जा मैं विचों निकलना। विद इन अ मिली सैकेंड दे विचों आत्मा ने विचों निकलना, शरीर ने उत्थे खड़े डिग पैना, बुरकी इत्थे आ ते इत्थे रह जाणी आ। जिन्हां ने अमृत की दात नहीं लई, गुरु गोबिंद सिंह जी दे पास जाके आपां अमृत की दात लैनी आ, गोल आ साडा जिंदगी दा। उत्थे पंज प्यारे साडी जिम्मेवारी लैंदे, उह कहिंदे तू करैत ना करी कोई, तेरी जिम्मेवारी साडी, असीं लैण आवांगे अंत वेले तैनूं, ते जे तू करैत कीती ते उहदे विच इक कंध खड़ी हो जांदी आ, फिर उह गुरु चाहवे तां ढा सकदे आ, नहीं तां फिर उह टहणी नहीं। इह बहुत जरूरी गल आ। जिन्हें जिन्हां ने नाम की दात मिली आ वह नाम की कमाई करिए, तो जिन्हां नूं नहीं मिली वह वाहिगुरु जी के पासों ये दात मंगीए, यह बहुत जरूरी आ। जिहड़ी अगली स्टोरी सी ये गुरु ग्रंथ साहब जी की भगत कबीर जी के शब्द की स्टोरी सी, ये फिर आपां इस नूं अगे तोरांगे किसी दिन, पर अज आपां इत्थे तक रहण दिंदे आ जी। नो क्वेश्चन जी, ठीक है, चलो फिर नंद साहब जी का पाठ करिए। वाहिगुरु साहिब जी ओ, राम कली महला तीजा, आनंद एको।